दुनिया में इन्वॉल्व है, वो जरा सी भी दीन की बात कोई करे तो उस पर वो यही कहती है कि ये एक्सट्रीमिज्म है। कुछ लोग तो नमाजों की पाबंदी को भी एक्सट्रीम कहते हैं। अच्छा, ये जो फंडामेंटलिज्म का लफ्ज है, फंडामेंटलिस्ट, अगर इसको एनालाइज करें आप, इस पर गौर करें, तो फंडामेंटल्स क्या है इस्लाम की? इस्लाम के फंडामेंटल्स क्या हैं? फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम, उसमें क्या आता है? कलमा शहादत, अल्लाह और उसके रसूल को मानना, पहली चीज से ही आ जाती। इसके मानने में क्या बुराई है? क्या किसी को हक नहीं कि वो अपने पैदा करने वाले को माने, अपने मोहसिन को माने? नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना क्या है? दिन में 5 मरतबा हाथ मुंह धोकर कुछ जिक्र करना, कुछ दुआएं मांगना, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई है इसमें? अपने जिस्म को साफ करने में क्या बुराई है? और अल्लाह का जिक्र करने में, जिसने हम पर बेशुमार एहसान किए उसको याद करने में क्या कोई बुराई है? किसी का क्या नुकसान है? और क्या है? ज़कात, किसी गरीब की मदद करना, अपने माल में दूसरों को शरीक करना, इसमें क्या बुराई है? फिर इसी तरह रोजा है। आप डाइटिंग करके बुरे नहीं हुँ? आपने सुना होगा कि हॉलीवुड की फिल्म स्टार्स कैसी कैसी डाइटिंग करती हैं, वो फंडामेंटलिस्ट नहीं। लेकिन अगर आप एतदाल के साथ रोजा रखते हैं, खाते भी हैं और इफ्तार भी करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? फिर हज करना, अगर कोई कहे कि फलां शख्स ने वर्ल्ड टूर किया है तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं हु? अगर कोई शख्स अल्लाह के घर तक होकर आ गया है, इसमें क्या बुराई है? यही तो फंडामेंटल्स हैं। अच्छा, फिर ज्यादा से ज्यादा उसमें जो जिहाद का है, फैक्टर है, उसको एक्सट्रीम कहते हैं या उस पर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप देखिए कि जहां मुसलमानों के साथ दुनिया में जुल्म सितम हो रहा है, अगर वो अपनी निजात के लिए, अपने दिफा के लिए असलहा उठाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? क्या सिर्फ यानी उनको मारते चले जाना, उन पर जुल्म सितम करना, जैसे कि आजकल पैलेस्टाइन में आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर वो अपना दिफा करें, ये बहुत बड़ी बुराई है। कभी सोचा जाए, कितनी हैरत की बात है ना। मुझे याद है कि मैं जब अपने पढ़ रही थी बाहर, तो मुझे एक मरतबा वीजा रिन्यू कराना होता था हर साल। तो वीजा हम रिन्यू कराने के लिए गए, तो मैं पूरे इसी ड्रेस में होती थी जिसमें मैं पाकिस्तान में होती, मैं इसी हाल में थी। तो उस शख्स ने बजाय इसके कि कोई बात पूछता वीजा से एक्सटेंड कराने से मुतल्लिक या जो उसकी जॉब से रिलेटेड चीजें थी, उसने मुझसे इस्लाम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पूछने लगा कि तुम कौन से मुसलमान हो, फंडामेंटलिस्ट हो या मोतदिल मुसलमान हो? मुझे याद नहीं क्या लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, ये 86 की बात है। तो मैंने कहा कि इस्लाम तो इस्लाम है, इस्लाम ने खुद तो कोई तकसीम नहीं की, ये तो लोगों की तकसीम है। और इसमें अगर देखे जाए तो इस्लाम के फंडामेंटल्स तो ये हैं और ये चीज है, इसमें आखिर कौन सी चीज बुरी है? तो आप खुद सोचें कि लोगों को सिंपल उस पर ले आया करें। असल में हकीकत बड़ी बड़ी बातों की कुछ भी नहीं होती, इतने बड़े बड़े लफ्ज बनाए हुए हैं। अगर देखा जाए उनको खोल के, तो अंदर कुछ भी नहीं उस गुब्बारे में, क्यों खौफ खाते हैं? सबसे बड़ी खौफ की बात ये कि ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, वो नाकाबले तस्खीर होता है। फिर अल्लाह और बंदे का मुकाबला हो जाता है, उसमें कौन जीत सकता है? सब खतरा तो यही है, इसी बात से सब डरते हैं। वरना अगर ये बतौर एक्शंस देखा जाए, तो इन एक्शंस में कौन सी बुराई है? कुछ भी नहीं। तो इसी तरह जो एक्सट्रीम की बात करते हैं, तो एक्सट्रीम क्या है? वो उनके अपने जहन की पैदावार है। और ये बात हमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि हर शख्स अपनी मर्जी की एक्सट्रीम बनाए हुए। हमारा दीन दीन फितरत है। एक्सट्रीम जब होती जब आपको 11 महीने रोजे रखवाए जाते और 1 महीना छुट्टी दी जाती। दुनिया के सब कामों में ऐसा ही होता है ना, 11 महीने काम करो, 1 महीना छुट्टी करो। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है
11 महीने छुट्टी करो, 1 महीना रोजा रखो।

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki. Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। आप सबकी बात सुनते रहते हैं, सियासी तौर पर भी बात सुनते रहते हैं, सियासतदान अपनी बात करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो सियासतदान हैं जो डेनमार्क की सियासत को उन्होंने आजकल फोकस किया हुआ है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क की सियासी पार्टियों की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सरपरस्ते आला चौधरी शौकत साहब जो है वो बरतानिया की फिजाओं से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको बरतानिया की फिजाओं से कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: चौधरी साहब, आप किस सिलसिला में गए हैं, कुछ सियासी मीटिंग के सिलसिला में गए हैं या कि वैसे भी गर्मी इंजॉय करने गए हैं?
3: नहीं राय साहब, मैं एक अपने गैदरिंग, अपने इवेंट था हमारा शादी का, फैमिली का, तो मैं उधर आया हुआ था। 2-3 दिन हो गए हैं शादी के सिलसिले में इधर आया था, क्योंकि हमारी फैमिली की एक शादी थी इधर लंदन में, तो उस सिलसिले में आया था शादी पे।
2: लेकिन चौधरी साहब, जो हमारे पास खबरें हैं, कुछ सियासी मीटिंग भी होनी है कुछ लीडरान के साथ, इसको ब्रेकिंग न्यूज दे ना।
3: कोई ऐसी बात नहीं है राय साहब, आपको पता ही है, मैं तो आपको पता ही है आस्ता आस्ता खुली किताब की तरह ही होता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जो होगा फिर आपको, पहले आपको ही बताऊंगा कोई सिलसिला इस तरह होगा
2: तो इसका मतलब है कोई बात है। चले चौधरी साहब, मौसम कैसा है बरतानिया का?
3: माशाल्लाह जी, मौसम बहुत, कल तो बहुत अच्छा था मौसम, टेम्परेचर भी बेहतरीन था और जो है ना गर्मी भी थी। आज थोड़ा सा जो है ना धूप नहीं है, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल ही है, गर्मी की तरह टेम्परेचर है, 25-30 बस इस तरह का है, 23-25 के लगभग है टेम्परेचर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है जी इधर।
2: तो चौधरी साहब, सियासी माहौल को किस तरह फील कर रहे हैं बरतानिया का?
3: वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का कोई का वो इशू नहीं होता, लेकिन ये सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना रابطे रखते हैं, एक दूसरे को साथ लेके इज्जत और इत्राम के साथ सब दोस्त भाई चलते हैं।
2: तो जो सब इज्जत इत्राम से ही चलना चाहिए, इसीलिए वो लोग तरक्की करके आगे निकल चुके हैं ना, तो हम अपने कानून ज्यादा अपने ऊपर सख्त करवाते जा रहे हैं।
3: जी बिल्कुल राय साहब, यही है, हम जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे को साथ नहीं लेके चलेंगे, तो ये हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, ग्रुपबंदियां ही होती रहेंगी। तो ये सबसे यहाँ मैंने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने दोस्तों को, अगर वो एक दूसरे के साथ को आगे पीछे भी होते हैं तो वो दूसरों को बुला के कहते हैं यार इनको साथ मिलाए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी पार्टी एक बड़ा धड़ा हो, तो जो अपने साथी है उनको छोड़ के नहीं जाते। ये सब जो साथी पुराने भी होते हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, कहते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा होगी, हमारी पार्टी बड़ी होगी और हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी। तो ये 2-4 बंदे हम खड़े होके कहें कि हम पार्टी है हमारी, तो इस तरह से इज्जत नहीं बनती। तो ये लोगों का मौकफ और तरह से होता है, ये सब दोस्तों को देखा है मैंने, ये सबको साथ लेके चलते हैं।
2: चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप काफी मसरूफ है मेहमान आपके पास बैठे हुए, इंशाल्लाह आप जल्दी वापस आ जाएं।
3: जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, जब आएंगे इंशाल्लाह रब्ता होगा।
2: सामाई नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत सरपरस्ते आला जिनकी आप बात सुन रहे थे। सामाई नाजरीन, हमारा किसी मुतफिक होना जरूरी नहीं है।
4: सामाई ने कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।